भाई भाई जी ने जो बने गिरी अच्छी नहीं पर रख लो तू ही देवे गए तू चेंजून कसो ले मी पर रख लो तू ही न्योंगे गुतुन न्योंगे गुतुन न्योंगे उनमें गुतुन डा कैसा कैसा तू कल की बागेंगे